0: वाह वाह वाह, क्या बात है, आया आनंद सुन के। बहुत चिर बाद यार मैं नसरत साहब की कवाली लाई है, मेरी गलती है, हफ्ते च एक अद्धी वार तो लानी चाहिए ना। भी मैं पहला पहला बहुत लाँदा सी, हुण तो तुसीं भी रिक्वेस्टां घट कर लग गए। इस तुसीं हुण जिहड़े मुंडे खुंडे ने हुण वह आपदियां रिक्वेस्टां करदे आ, भाजी ला दो फिर मारता उन्हूं खा लिया उन्हूं। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरा तुसीं सुन रहे हो, तो चलो वह भी वधिया गाने आ। मैं तो अजकल जिम दे विच सुन रहा नवान संधू की एल्बम, मैनूं बड़ी वधिया लगी। नवान चक्की आ रहा मुंडा फटे। एंड प्रोग्राम है पंजाबी लहरा, तो नंबर अपना 905-673-3337 के उत्ते गल्लां बातां थोड़ियां साड़ियां हो रही ने। तो एक थोनों असी हुण लैके चलना सरांश हुणा कोल। सरांश साढ़े नाल ने यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो, सरांश थोड़ी मदद कर रहे ने भी थोनों गवर्नमेंट कोलों ग्रांट मिले स्टडी दी। देखो ये ग्रांट है, ये तुसीं वापस नहीं करनी, थोनों ग्रांट मिल गई तो थोड़ी बल्ले बल्ले है, ठीक है। पैसे गवर्नमेंट ने देते भी तुसीं स्टडी करो, सारे थोड़े घर के खर्चे पूरे होणगे ते पैसे वापस भी नहीं करने पैने। सरांश वेलकम, किवें हो?
1: थैंक यू, सत श्री अकाल चढ़दी कला जी, तुसीं दस्सो जी।
0: वधिया, सब ठीक ठाक?
1: गुड जी, ठीक ठाक।
0: तो सरांश बड़े लोग ने जिहड़े सुणदे आ कि अच्छा पैसे मिल रहे, उन्हां नूं पता नहीं भी इह पैसे असीं कादे लई यूज कर सकदे आ, ते की एक भी डॉलर भी नहीं वापस करना पैंदा।
1: हाँ जी, इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग है, फंडिंग के दो पार्ट्स हैं, एक है ग्रांट जो वापस नहीं करना, एक होता है ऑप्शनल लोन जो कि बहुत टाइम बाद वापस स्टार्ट करना होता है देना, आसान सी किस्तों में। शुरू में 0% होता है ब्याज, बाद में जाके 2.5% है पूरे साल का ब्याज जो कि कुछ भी नहीं होता। और लाइक इस पैसे को आप 30,000 से 100,000 की जो फंडिंग है, तो लेके लाख डॉलर की जो फंडिंग हैगी, आप कहीं भी कैसे भी खर्च सकते हैं। गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए दे रही है, आप स्किल डेवलप करें, एजुकेशन हासिल करें, अकाउंटिंग करें, बिजनेस मैनेजमेंट करें, बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, और साथ में आपको फंडिंग मिल रही है लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने।
0: सुश्रांश, लिविंग एक्सपेंसेस में क्या आता है? अगर किसी को $30,000 मिलता है तो कहां वो खर्च सकते हैं?
1: वो आप लाइक उससे, अब देखो जैसे अभी गैस स्टेशन के बाहर कितनी लाइन लगी पड़ी गैस भरवाने के लिए, राइट, क्योंकि गैस थोड़ी सस्ती हो गई है, तो आप उसको गैस भरवाने के लिए यूज कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: मतलब जब हम सेविंग का इतना सोचते हैं कि गैस सस्ती है अभी आज भरवानी हमने, लेकिन जब गवर्नमेंट पैसे दे रही है हमें, तब हमें लगता है इसमें इसी में कुछ कैच होगा या इसमें कुछ नखरे हैं हमें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप स्किल हासिल कर रहे हैं, इतने लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, आगे जाके रूल्स चेंज होने वाले हैं, आपने अभी भी नहीं लिया तो आप पीछे रह गए हैं, क्योंकि आप अपने 5 दोस्तों को फोन करें, 3 पक्का एनरोल हो चुके होंगे और 2 हमसे भी होंगे।
0: वेरी गुड। नहीं देखो, सो अगर किसी की सरांश कह लो कि बिल्स ले भी यूज कर सकते हो?
1: बिल्कुल जी, बिल आप कहीं भी उसे कर, आप बैक होम भेजें, कोई गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग दे रही है, हर किसी के लिए एक्सपेंस डिफरेंट है, चाहे वो बच्चों को लिए ग्रोसरी कर रहे हैं, कैसे भी यूज कर रहे हैं, देयर इज नो कैच इन इट। लाइक आप हमें कॉल करें, हमारे ऑफिस में टाइम बड़ा कम रह गया, 22 जुलाई के बाद आपको ग्रांट्स नहीं आएगा, सारा लोन ही आएगा। लोन तो पहले इस देश में हर किसी में पहले से ही है, तो ग्रांट्स लीजिए, ग्रांट्स।
0: वेरी गुड। सो नंबर है सरांश दा 4372643175, 4372643175। सरांश थोड़े लिए हाजिर ने, तो थोड़ा वधिया हेल्प करेंगे। सरांश थोड़ी कितनी फीस है?
1: आपकी फीस जी, इसमें काम होने के बाद डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में फंडिंग आती है, पहली बात, कोई कैच नहीं है। नंबर टू, हमारी फीस काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है। कितनी ज्यादा है? कुछ नहीं जी, कोई परसेंटेज, कोई कमीशन नहीं, साफ सुथरा काम है। और लाइक इसमें फीस हमारी 199 या $499 है, फ्लैट फीस है। आपके पैसे बहुत ज्यादा बनते हैं, यस, क्योंकि फैमिली ऑफ फोर का जैसे 80,000 बन जाता है, जिसमें से 40,000 तो ग्रांट है, 40,000 ऑप्शनल लोन है 0% पे, जो कि बाद में जाके सिर्फ 2.5% का हो जाता है ब्याज दर, दैट्स इट। और हमारा फीस इतनी कम है तो लोगों को शक होता है, लेकिन जो लोग हमसे काम करा चुके हैं, हमारी नजर हमारी गुल्लक पे, हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, जिस काम में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं हिल रहा, उस काम की फीस ज्यादा क्यों ले रहे लोग आपसे? और बताओ, सीधी बात है ना, बट इसलिए हम ऑनेस्टी से काम करें तो हमारे पास आए, इतने लोग पहले ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, 7 साल हो गए हमें, तो कोई कैच नहीं है। नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, स्किल हासिल करें, हाउसवाइफ, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर आप हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप पेंशन पे हैं, तब एलिजिबल है, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आसान कोर्सेज हैं, कोई हार्ड कोर्सेज नहीं है हमारे पास। नंबर 437-264-3175, 437-264-3175, तुसी हुणे भी कॉल कर सकते हो जी, 4372643175।
0: 437-264-3175-437-264-3175. سرانش بہت شکریہ سر.
1: تھینک یو.
0: تھینک یو جی. 9095
2: جی
0: جی بدیا کی چلو کوئی نہ ہور سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہے کوئی نہ ٹھیک ہے ضرور بہت دھنواد ٹھیک ہے اور سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہو تسی چلو خوش رہو زندگی ریلیکس کرو ودیا فنکشن کریا کرو لائف کوئی نہ صحیح بھی دینا بھائی کوئی نہ اور سناؤ ٹھیک ہے بلے بلے کوئی گانا گونا لائیے تھوڑے لی چلو بہت دھنواد تھوڑا سو پروگرام ہے پنجابی نا تے تھوڑے لی دو میسجز نے پھر واپس Oh, yeah.
3: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

पिज्जा टू गो बेस्ट पिज्जा इन द टाउन पिज्जा टू गो तंदूरी पनीर पिज्जा बटर चिकन पिज्जा चाट पिज्जा मखनी पनीर पिज्जा शाही पनीर पिज्जा कले पिज्जे नहीं जिथे तुसी फिश पकौड़ा बेस्ट सोया चाप मलाई विंग्स क्रंची मोमो मलाई मोमो सुन के आया ना मुंह विच पानी। सो अज अपने यारां दोस्तां ते परिवार दे नाल कुछ वधिया ते क्वालिटी वाला खाण नूं दिल कर रहा ना तां इको एक नाम याद रखो पिज्जा टू गो बेस्ट पिज्जा इन द टाउन। तुसी पहुंचो मैकलॉगन सैंडलवुड वाली लोकेशन ते या तुसी पहुंच सकदे हो टू काउंटी कोर्ट ब्रैम्पटन नियर शेरडन कॉलेज वाली लोकेशन ते या तुसी चिंगूजी एंड क्वीन वाली लोकेशन ते पहुंच सकदे हो नो फ्रिल वाले प्लाजे दे विचो। इको एक नाम याद रखना पिज्जा टू गो स्वादला ते क्वालिटी वाला पिज्जा पिज्जा टू गो 905-840-9996 9 6 9 6

जुड़े तुसी रेडियो प्रोग्राम सब रंग दे नाल 647-367-5353 ते असी याद कर रहे सी अज गुरु अर्जन देव जी दी शहादत नू। एक कारण तां मैं तुहानू पहले दस्या सी कि जदों उन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना कीती तां उस वेले दा जिहड़ा मुगल बादशाह सी जहांगीर, उसने कहा कि इहदे विच साढ़े उस अल्लाह पाक दी जिहड़ी है बाणी उस नूं वेदे विच शामिल कीता जावे, जिस ते उन्हां ने इस चीज़ नूं नहीं एक्सैप्ट कीता। दूसरा, जहांगीर दे राज दे विच बगावत करन वाला सी एक खुसरो मिर्जा, वह बगावत दी सोच रहा सी जहांगीर दे खिलाफ, ते जहांगीर दी ये सोच सी कि वह गुरु साहब उस दी हैल्प कर रहे ने, गुरु साहब उसका समर्थन कर रहे ने, उस नूं बगावत करन दे विच भड़का रहे हन। ये भी जहांगीर दे जिहड़े पैरोकार सी ना, उस दे जिहड़े नज़दीकी सी, उन्होंने उन्होंने कन्न भरे जहांगीर दे गुरु साहब दे खिलाफ। और तीसरा एक कारण उहदे नाल भी तुसी सारे तुसी समझदे हो कि चंदू जिहड़ा सी, चंदू चाहुंदा सी कि चंदू दी जिहड़ी बेटी सी उस दी शादी गुरु हरगोबिंद सिंह जी जिहड़े गुरु साहब दे बेटे सी उहनां दे नाल कीती जावे, लेकिन गुरु साहब ने उस दी उस ऑफर नूं भी एक्सैप्ट नहीं कीता, वह भी उहनां दे नाल खार खांदा सी। उसने भी जहांगीर नूं गुरु साहब दे खिलाफ भड़काया, बहुत भड़काया, इन्ना भड़काया इन्ना भड़काया कि उसने जदों फिर जहांगीर ने उस उन्हां नूं बुला लिया उत्थे लाहौर दे विच, ते उहनां नूं कहा वी या ते इस्लाम कबूल कर लवो या साडियां जिहड़ियां एक दो शर्तां ने ते इहनां नूं तुसीं मन्नो, ते जदों उहनां ने इनकार कर दिता ते उहनां ने पकड़ के उन्हें उस मौत की सजा जी देती, तो जो जो तसीहे उन्होंने दिते गए वह सारे तुसी पढ़ चुके हो इतिहास के किताबों के कि तत्ती तवी के उपर उन्होंने बिठाया गया, गर्म गर्म रेत जी उन्होंने पिंडे के उपर पाई गई, फिर उन्होंने अग्नि दे भेट भी किया गया, अद जली उन्होंने बॉडी रावी दरिया के भी। सो किड्डा दर्दनाक, किड्डी डरावनी, किड्डी भयानक जिहड़ा उन्होंने उहदे नाल वर्ताव किया, लेकिन गुरु साहिबान सी उन्होंने विच बड़ा सबर सी, बड़ा संतोख सी, उन्होंने सब कुछ नूं अपने उत्ते बर्दाश्त किया और मिसाल कायम की। मिसाल इदां ही कायम हुंदी है, देखो मिसाल तां ही साडे सामने ने। उस तो बाद देखो इस जिहड़ी जोत जिहड़ी जगदी सी उस तो बाद सानूं शहादत जिहड़ी गुरु तेग बहादुर जी दी उहदे बारे भी असीं पढ़िया है, सब जानते हाँ कि चांदनी चौंक दे विच दिल्ली दे विच किस तरह उन्होंने शहादत दिती। सो साडा विरसा जिहड़ा ना इन्ना महान है, इन्ना बलवान है, सानू साडे इस विरसे तो जरूर कोई ना कोई सेध लैनी चाहीदी है और उन्हां शहीदां नू याद रखना चाहीदा है, क्योंकि जे याद नहीं ना रखांगे तो मैं जिद्दां कई बार कहना हुंना कि सोहणे पुत ते मां नू फकर हुंदा है, मां पुत्तर नू वेख के फुल जांदी, सोहणे पुत ते मां नूं फकर हुंदा है, मां पुत नूं वेख के फुल जांदी, धीआं पुत कमांदरू होण जिहदे उस मां दी लाटरी खुल जांदी, पता लगदा सूरमे योधिआं दा हनेरी जदों कोई कौम ते झुल जांदी, ओए उस कौम दा बेड़ा गर्क समझो जिहड़ी कौम शहीदां नूं भुल जांदी, उस कौम दा बेड़ा गर्क समझो जिहड़ी कौम शहीदां नूं भुल जांदी। सो ही शहीदां नूं याद करना ना साडे सारिआं दा फर्ज़ है, करना भी चाहीदा है, असीं भी करिए ते अपने बच्चों भी उन्होंने नाल वाबस्ता रखिए, जाणू करवाइए, दसीए, समझाइए उन्होंने सारिया चीज़ों के नाल नाल, ये भी साडा विरसा है, साडी विरासत है, विरसे नू याद रखना साडा सारिया का फर्ज है। जिवें एक शायर ने लिखा कि अपने विरसे का जिन्हों एहसास नहीं हुंदा, अपनी विरासत का जिन्हों एहसास नहीं हुंदा, ऐसे लोगों का कदे कोई इतिहास नहीं हुंदा। जेकर असीं अपने इतिहास नू अपने विरसे नू जिंदा रखना है ना, ते सानू उसनू याद भी जिहड़ा रखना पऊगा। सो प्रोग्राम दा वक्त हुण समाप्ति वल वध रहा है। शब्द मैं तुहाडे नाल शेयर कीता सी एक वाहिगुरू, वाहिगुरू दा दो तीन दोस्तां ने मीनिंग दस्या, उन्होंने अपनी समझ दे मुताबिक जो उन्होंने सुनिया होएगा वह भी ठीक है, लेकिन मैं जिन्ना क सुनिया जिन्ना क पढ़िया उहदे मुताबिक, मैं जो पढ़िया उहदे मुताबिक वाह शब्द का मतलब तो उही है जो उन्होंने दस्या कि वाह तारीफ करनी, वाह कहना। गुरु शब्द जिहड़ा ना गु गु शब्द का मतलब हुंदा है अंधेरा, ते रूह का मतलब हैगा चानन। वह कहिंदे कि वाह साडे हंधेरमई जीवन दे विच रोशनी करन वाला जिहड़ा ना
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਟਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ।

0: संतोष की बस में कितने बाकी रह गए हैं लोग?
1: जी बिल्कुल
0: 905-673-3337। तुम कुछ मिस कर रहे हो सारे भाई और बहनों? 905-673-3337 किन्ने जाने बस दे विच ने, उन्होंने ये पूछा 905-673-3337। आंकड़े जिवें बस दे मैच नहीं हो रहे, अगर तुहाडी इनकम मैच नहीं हो रही कर्जे दे नाल, ये मैसेज सुनो।
2: यार अजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे हैं, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200।
0: कर्जा कोई भी होवे, कोई बैड प्रॉपर्टी बुक करा बैठे, गाहा चैंपियन बन बन के जवाकां ने जाना यूनिवर्सिटी ते हुण जिद जिद के ना प्राइवेट मोर्गेजां चक चक के नवीं क्लोजिंग करा रहे हैं। जिन्ने इदां दे खड़पंच साहब ने, प्लीज़ खड़पंची बंद कर दो, क्योंकि पहलां भी सरपंच साहब तुसीं पंगे लए ते हुण ना लो। कानून कहिंदा हैगा कि विथ तों बाहर नहीं जाना, कानून कहिंदा, मैं भी कह रहा क्लोजिंग नहीं करवाउणी, ओके चल जूगा 416-518-3200। कर्जा नहीं पे हो रहा टीडी बैंक नूं, मैं एयर दत्ते बोलता पिया, हो रहा टीडी बैंक नूं, मैं एयर दत्ते बोलता पिया, टीडी बैंक नूं, आरबीसी नूं, सीआरए नूं, सीआरए दा कर्जा भी नहीं दे सकते, तुहाडी मर्जी है जे नहीं दे सकते, जे तुसीं क्वालीफाई होंदे हो 416-518-3200 ते कॉल करनी है। कानून है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स टू गैट मोर टैक्स, टैक्स तो ही आऊगा जो लोग प्रोटेक्ट होंगे, तुम जरूर कॉल करनी है। इस तरह फेथ फ्लोरिंग वाले का नंबर नोट करो, तुम वारनिश करवानी है फ्लोर की, स्टेयर केस बनाने लक्कड़ के, पुराने फ्लोर में वारनिश करके उन्होंने रगड़ के हार्डवुड में नवा बना है, टाइल्स पाया है, थोड़ी पुरानी टाइल्स खराब ने कढ़ के नवी पाया ने। फेथ फ्लोरिंग वाले कहें कि फ्लोरिंग डैक बैकयार्ड के लक्कड़ का तो फेंस का कोई भी काम है, सानू जरूर कॉल कर लियो 437-223-1094 437-223-1094। संतोष सारे ने लगन लग दी भी सब कुछ पॉजिटिव है, आस पास सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉसिबल है। कोमल को कॉल करो, पॉसिबल है कि सस्ते तो सस्ती इंडिया की टिकट मिलेगी 905-239-7711। इंडिया जाना, पाकिस्तान जाना, एकदम जाना, लेट जाना। कल मैं कैलगरी तो टिकटा चेक कराई तीन टोरंटो दियाँ $2200 दियाँ, कोमल को कॉल की $1650 लभ के देती हैं। कोमल ऑल लिंक ट्रैवल 905-239-7711 9052397711। विंडोज चेंज करवानी है राइट विंडो फोर्स 416-206-3200 416-206-3200 416-206-3200। और नानक डक्ट क्लीनिंग कहते हैं, डक्ट क्लीनिंग नहीं तुहाडी फर्नस की भी एज बता देंगे, तुहाडे घर दे विच अग लगन का खतरा खत्म कर देंगे, क्योंकि लिंट फसिया हुंदा किराए वाली प्रॉपर्टियां दे भी डक्ट क्लीन कराया करो। लिंट फस जाता जो तुम ड्रायर चलाई जाने वो तो रूह निकल निकल के फसी जाती है, वह अग लग जाती है उतों। नानक डक क्लीन कहते हैं फिल्टर बिल्कुल फ्री चेंज, जिन्हें भी कॉल आने $150 3000 square feet तक का घर कवर करा, कोई क्वेश्चन नहीं होर 416-729-1521 416-729-1521 416-729-1521। डेंटिस्ट्री एट रैम्बलर, तवा किचन वाला प्लाजा, नजारा रेस्टोरेंट वाला प्लाजा, 30 रैम्बलर ड्राइव, इत्थे लोकेटेड ने डेंटिस्ट्री एट रैम्बलर। डॉक्टर गरेवाल, दूर दूर दे शहरां तों लोग आते हैं, एक रिश्ता स्टैबलिश इतने होंगे, एक टॉप के डेंटिस्ट, हंबल डाउन टू अर्थ, तो पेन पेन तो नेड़े भी नहीं लगन देंगे, इदा की टेक्नोलॉजी आ, हाई एंड क्लीनिक आ, इस तरह की मशीनरी है कि दंदा च दर्द का डर हों किसी वो थोड़ा दर्द का डर खत्म कर देंगे। 905-451-8211 बच्चे तो बजुर्ग फ्री दंदा का टैस्ट करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, तो व्डे 90 साल तो घट इनकम वाले फ्री दंदा का इलाज हो सकता है 905-451-8211 9054518211। डेंटिस्ट्री एट रैम्बलर, ABS ऑटो कलेजन, किचनर वाटर कैम्बरेज एरिए, किसी की गड्डी फुट गई लंडन तक, तुम जरूर कॉल करो अपने भरावान, रेंटल गड्डी तो लैके डेंटिंग पेंटिंग का काम इंश्योरेंस ना आपे डील करना, ट्रकों की सेफ्टी, ट्रकों के डेंटिंग पेंटिंग, ट्रकों के चैसी के उत्ते पेंट मारना, ABS 416-520-1940 416-520-1946। पटे कमाणिया लीफ स्प्रिंग एंड बुशिंग का काम टॉप का करते हैं बोल्टन स्प्रिंग शॉप वाले 905-857-8282 9054857-8222। और अशोक सैनी CPA CGA अपने अकाउंटेंट तो खुश नहीं तो अशोक सैनी को कॉल करके खुश हो जाओगे 905-458-1399 15 साल का

0: Brampton. या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton, Indian Fruitland. ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton. वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900.
1: मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
2: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फैदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
0: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आए और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाए। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: 6647416 1616. थैंक यू सो मच देव जी.
1: थैंक यू जी कमिंग फॉर द स्टूडियो ते साडे लिसनर नु वधिया जानकारी देने. थैंक यू. नंबर फिर दे दो आपा.
0: नंबर जी 6474461616 6474461616. थैंक यू जी.
1: ਲੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ. ਡੇਵ ਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ. ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ 21 ਨੂੰ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ 21 ਨੂੰ, ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 21 ਨੂੰ. 21 21 21. ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੀਕੈਂਡ.
2: समर सिर्फ मौसम ही हॉट नहीं, एयरपोर्ट निसान दिया डील्स उस तो भी ज्यादा हॉट ने.
3: ब्रांड न्यू 2026 निसान किक्स बाय करो सिर्फ $26,899 विच. 2026 निसान रोग लीज करो सिर्फ $189 बाय वीकली. 2026 रोग फाइनेंस करो 0% नाल या अप टू $5,000 कैश रिबेट लवो. टैक्सेस लाइसेंस फीस एक्स्ट्रा, कंडीशंस अप्लाई.
2: ये हॉट डील सिर्फ जून 30 तक ही ने. वो जानकारी ले आज ही राज सोता जाओ फारूक नु कॉल करो एट 905-791-4900.
4: Indian Fruitland, one stop for all your grocery needs.
5: ले इको जगह तो किथे सारा कुछ मिलता. दो चीजा लई एक जगह रुको, फिर अगलिया दो चीजा लई एक जगह रुको, फिर अगलिया दो दी दूजी जगह रुको.
4: इंडियन फ्रूटलैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स. सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस ते आज ही पहुंचो. हुन इंडियन फ्रूटलैंड दी 7वीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन.
6: ਮਸਕੋਕਾ ਅੰਦਰ 1.5 ਏਕੜ ਤੇ 2600 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਸੇਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ. 3 ਬੈਡਰੂਮ, 2.5 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹਨ. ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੈ. $30,000 ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ 14x14 ਫੀਟ ਦਾ ਪੈਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ. 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਟੇਜ $1,00,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. 12x30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੈਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਕਆਊਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ. ਮਸਕੋਕਾ ਰੂਮ ਵੀ ਫਰਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ. ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਬੀਚ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਗੰਦਮ 416-265-2222 416-265-2222.
7: Are you ready?
8: Pika Junction leke aaye ne special offers for festive season. Khaas festive season le catering start sirf $9.99 ch.
9: Jis vich milangiyan 8 items. Eh live catering vi karde ne.
8: Function vadda hove ya chota, catering wala ta sira la denge.
9: Ena kol shandar party hall vi aa, oh vi reasonable food prices te.
8: Is festival season banao apniyan khushiyan nu dugna te pahuncho Tikka Junction.
9: Call 647-429-4040.
8: 647-429-4040. Tikka जंक्शन, खुशियां दा सेलिब्रेशन.
10: आ भेने खरीद लिया गहने?
11: किथे छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना.
10: ले ए भी गल कोई कहण दी है, सोना तो सोना ही हुंदा है.
12: 32-55-80. हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने.
13: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी. कॉल 905-450-2828.
14: वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम मनी मेकर. अज असी तुहाडे लई एक खूबसूरत कोटे लेके आए हैं जिहड़ी कि मस्कोका दे विच लोकेटेड है. 1.5 एकड़ तो लैके 2 एकड़ दे विच बनी हुई है. 2023 दी बिल्ट है. 3 बैडरूम, 2.5 वाशरूम ने. मेन फ्लोर ते लिविंग डाइनिंग ते फैमिली एरिया ने. प्लस ये एयरबिन ते पिछले 2 साल तो बिजनेस कर रही है. 2025 दे विच $90,000 दा प्लाजा ने बिजनेस किया है एयरबिन तो. सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के उपर बीच है. 15 मिनट की ड्राइव के उत्ते डाउनटाउन हंट्सविल ने. 15 मिनट की ड्राइव से गोल्फ कोर्स है. जे तुसी इस कोटे नूं देखना चाहते हो, इस कोटे नूं बाय करना चाहते हो, राइट वे कॉल 416-265-2222. J Gundam call 416-265-2222. Bye bye.
15: Another Don clean with the Don Ducks.
16: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
17: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
16: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
17: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
16: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
17: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
16: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
15: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566 नोबेल फ्रेश फूड।

क्या बात, तो कट्ठिया होके तिया ते बहना बहुत सारे ने कई मैं क्या कई कई साल साल बाद कट्ठिया अपने कम उन्हों दा दिन हैगा उस दिन नूं ते बहुत बहुत जिथे जिया सारे वालों सारे लिसनर वालों।

देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 530 24/7 जिन्हें भी प्रोग्राम आंदे ने उन्हां नूं सुनने वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहते हो तो उत्ते क्लिक करो या फिर अपने आई पी टीवी बॉक्स के उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओ जाके देश परदेश टीवी नूं क्लिक करो उत्ते तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7 मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह की तुहाडी मॉर्गेज रिन्यू होने वाली है तुसीं प्राइवेट मॉर्गेज स्टक हो गए हो ते वध इंटरेस्टेड पे कर रहे हो ए तुहाडी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्टेड ते गरंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी तुहाडी बनवा देणगे ते $3500 तुहानूं कैश वापस भी दित्ता जाएगा जां फिर बिजनेस लोन लैणा जां लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी है अज ही कॉल करो प्रभदीप सिंह 416-710-7524 416-710-7524 ਤੇ ਸਭ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।